0: Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: एक साफ सुथरा घर, चमकते बर्तन और ताजगी से भरपूर एहसास, हर घर की जरूरत और उस जरूरत का भरोसा है कमांडर। रोजमर्रा की जिद्दी दाव हो या बच्चों के खेल कूद से गंदे हुए कपड़े, कमांडर वॉशिंग पाउडर अपनी ताकतवर सफाई के साथ कपड़ों को बनाए ज्यादा साफ, ज्यादा रोशन और खुशबूदार। किचन में चिकनाई और मैल का मुकाबला अब मजीद आसान, कमांडर डिश वॉश। बर्तनों से चिकनाई को मोअस्सर तरीके से साफ करें और बर्तन को दे शानदार चमक, ताकि आपका किचन हमेशा साफ और खूबसूरत नजर आए। और जब बात हो जाती नगदाश्त की, तो कमांडर ब्यूटी सोप दे ताजगी, नरमी और दिलकश खुशबू का एहसास। हर नहाने के बाद खुद को महसूस करें पहले से ज्यादा तरोताजा और पर एतमाद। मियार सफाई और एतमाद का नाम कमांडर। कपड़ों की बेहतरीन सफाई के लिए कमांडर वॉशिंग पाउडर। बर्तनों की शानदार चमक के लिए कमांडर डिश वॉश। रोजाना ताजगी और नरमी के लिए कमांडर ब्यूटी सॉप। आज ही कमांडर प्रोडक्ट्स को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाएं और फर्क खुद महसूस करें। हर घर का एतमाद, हर दिन कमांडर की बेहतरीन सफाई। तो पता याद रखिए, रमजान मार्केट, दुकान नंबर 28, प्रोप्राइटर अजब खान के साथ इस नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं, 0313-91-27-273।
3: आपका अपना रेडियो, रेडियो में 88.4 नेटवर्क।
4: زنگیر افغان محمد بشیر افغان قربان اعلی جانا والا جو زمانہ دان بلنگ

0: एक साफ सुथरा घर, चमकते बर्तन और ताजगी से भरपूर एहसास, हर घर की जरूरत और उस जरूरत का भरोसा है कमांडर। रोजमर्रा की जिद्दी दाव हो या बच्चों के खेल कूद से गंदे हुए कपड़े, कमांडर वॉशिंग पाउडर अपनी ताकतवर सफाई के साथ कपड़ों को बनाए ज्यादा साफ, ज्यादा रोशन और खुशबूदार। किचन में चिकनाई और मैल का मुकाबला अब मजीद आसान, कमांडर डिश वॉश, बर्तनों से चिकनाई को मोअस्सर तरीके से साफ करें और बर्तन को दे शानदार चमक ताकि आपका किचन हमेशा साफ और खूबसूरत नजर आए। और जब बात हो जाती नगदाश्त की तो कमांडर ब्यूटी सोप दे ताजगी, नरमी और दिलकश खुशबू का एहसास, हर नहाने के बाद खुद को महसूस करें पहले से ज्यादा तरोताजा और पर एतमाद। मियार सफाई और एतमाद का नाम कमांडर, कपड़ों की बेहतरीन सफाई के लिए कमांडर वॉशिंग पाउडर, बर्तनों की शानदार चमक के लिए कमांडर डिश वॉश, रोजाना ताजगी और नरमी के लिए कमांडर ब्यूटी सॉप। आज ही कमांडर प्रोडक्ट्स को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाएं और फर्क खुद महसूस करें। हर घर का एतमाद, हर दिन कमांडर की बेहतरीन सफाई। तो पता याद रखिए, रमजान मार्केट, दुकान नंबर 28, प्रोप्राइटर अजब खान के साथ इस नंबर पर भी राब्ता कर सकते हैं 0313-91-27-273।
1: आपका अपना रेडियो, रेडियो में 88.4 नेटवर्क।
0: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाए, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनोसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-63-780, व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।
2: Need

वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जो कुन-फ़यकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ रहिए।

तेरे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो अमल 88.4 डांकी नशरिया, हमारे साथ रहे।

दिल से जो निकलती है, दिलों तक जो जाती है, मालूमात को जगाती है, दुनिया का हाल बताती है। ये वो आवाज है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है। ये आवाज है जो अमन की है। ये वो पैगाम है जो अमन है। रेडियो अमन 88.4 अमन का पैगाम।

0: तो हम तेरे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 डांस की नशिया, हमारे साथ रहे, हमारे साथ रहे।
1: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है, वो जो कुन-फ़यकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांक की इस्लामी नशरियात, हमारे साथ रहिएगा।

0: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.
1: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।
2: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाए, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनोसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-9363-780। व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।

Rahim. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. And very warm welcome to all the sweet listeners of Radio Pegam 97.8 Global FM 91 Dera Ismail Khan and Radio Aman 88.4 Dhaka. जी जनाब, तीन रेडियो स्टेशन और एक आवाज, और ये आवाज है जनाब केसर नेचर पाकिस्तान की, ये आवाज है सेहत की, ये आवाज है शिफा की, और ये आवाज है खूबसूरती की। जनाब सुपैर के चार बजती, जनाब आप अपने शहर के जी जनाब फेमस एफएम यानी कि डेरा में मौजूद हैं तो ग्लोबल एफएम 91, और अगर आप मौजूद हैं पहाड़पुर में तो रेडियो पैगाम 97.4, और अगर आप टांक में मौजूद हैं तो रेडियो अमन 88.4 के ऊपर सुनते हैं केसन की आवाज, केसन का मैटनी टाइम जिसको हम कहते हैं केसन टी टाइम शो। तो जनाब इन तमाम शहरों के अंदर मौजूद तमाम गर्ल्स एंड बॉयज, अंकल एंड आंटी, चाचा एंड चाची, मामे एंड मामी, दादा एंड दादी एंड नाना एंड नानी, ऑफ कोर्स सब सुनने वालों को खलील ताबे शामान का सलाम, ढेर सारी नेक तमन्नाएं, ढेर सारा प्यार आप सभी के नाम। तो जनाब कैसे हैं आप सभी लोग? जनाब हमेशा की तरह मैं उम्मीद करूंगा कि जिस तरह मैं अल्हम्दुलिल्लाह फाइन एंड शाइन, चमकता हुआ, दमकता हुआ, हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, खिलखिलाता हुआ चहचहाता हूं, मेरे तमाम जाने वाले, तमाम दोस्त, तमाम फ्रेंड्स बिल्कुल भी इसी तरीके से खैरियत और अफियत के साथ होंगे, और आज का दिन बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे। जी जनाब हमेशा की तरह ढेर सारी बातें, हाँ जनाब बहुत सारी बातें, कितनी बातें हम आप लोगों के साथ करते हैं इस घंटे के अंदर, और जितनी बातें भी करते हैं आप यकीन कीजिए कि वो सारी की सारी जो होती है ना वो आपके फायदे के लिए होते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके डिपेंड करता है कि आप कौन सी मुफीद बातों को अपने पल्लू के साथ बांधना चाहते हैं, और कौन से ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालना चाहते हैं। जनाब एकदम फिर से पहाड़पुर वालों को जनाब ज्वाइन करने के ऊपर ढेर सारा वेलकम, और पहाड़पुर मेरी जान है, पहाड़पुर के लिसनर मेरी जान है, मेरी कंपनी की पहचान है, मेरी कंपनी की शान है। जी जनाब चार दिनों की दूरी के बाद जो है बिलाखिर एक दफा फिर से मेरी आवाज जो है आज पहाड़पुर वालों को सुनने को मिल रही है। अपग्रेडेशन कंप्लीट हुई है 97.4 की, एंड होपफुली कि जनाब आज 97.4 पर आप मेरी आवाज को बहुत ही प्यारा सुन रहे होंगे, बहुत ही क्लियर और नीट सुन रहे होंगे, और दूर दराज के इलाकों से भी मुझे सुन रहे होंगे। तो जनाब अगर आप किसी ऐसे एरिया में मौजूद हैं कि जहां पर आपको पहले 97.4 नहीं आता था, और अगर आज आपको आवाज आ रही, मुझे स्पेशली बताएंगे पंजाब के लोग जो जनाब बिलोट के आसपास रहते हैं, चश्मा के आसपास रहते हैं, मियांवाली के आसपास रहते हैं, कुलूर कोट से आगे रहते हैं, ठीक है जनाब शालम में रहते हैं, दरिया खान और बक्कर से आगे के इलाकों में, और इसके अलावा चहकान के इलाकों में, या फिर हिम्मत और इनके इलाकों में जहां पर पहले हमारी आवाज बहुत अच्छी जाती थी 97 की, तो बताएंगे आज के भाई अपग्रेडेशन कितनी सक्सेसफुल हुई है 97.4 की मैनेजमेंट की, कि जनाब चार दिन हमारा एफएम बंद रहा इस वजह से कि जनाब आप लोगों तक जनाब जो है रेडियो पैगाम का पैगाम जो है बहुत अच्छी तरीके से जा सके। तो जनाब पहाड़पुर के बासी जो यूजर है वो हमें जरूर आज बताएंगे कि भाई क्या वाकई आपकी हम रेडियो पैगाम की आवाज को आप तक पहुंचाने में सफल हुए हैं, और कितने हुए हैं, और कौन से नए इलाकों में जो है रेडियो पैगाम 97.4 को सुना जा

0: इसलिए होती है कि जब किसी कंपनी की डिमांड बढ़ती है और प्रोडक्शन पीछे से नहीं बढ़ाई जाती। ये हमसे गलती हुई, जब डिमांड बढ़ गई तांक में भी, पहाड़पुर में भी, हर जगह, तो प्रोडक्शन की तरफ जो है तवज्जो नहीं की, प्रोडक्शन वही चल रही थी, तो जिसकी वजह से ये बीच में एक गैप आ गया था और चीजें शॉर्ट हो गई थी। और दुकानदार भी गुस्से थे, लिसनर भी गुस्से थे कि हमारी प्रोडक्ट हमें नहीं मिल रही, तो इनशाला आज से आपको मिलेंगी। और स्पेशली जो हमारा हाजमा कंट्रोल सिरप है, अच्छा जी, खुशखबरी है, खुशखबरी कि एक तो हमने इसकी कीमत कम कर दी है। पहले 130 रुपए इसकी कीमत थी, 180 रुपए, सॉरी जी, इसकी कीमत थी 180 रुपए। जो केसन का सेरीसीड हाजमा कंट्रोल सिरप है, इसकी कीमत थी 180। इतना महंगाई का दौर है इस वक्त, और जनाब हर कंपनी अपनी प्राइसेस को बढ़ा रही है, लेकिन हमने आप लोगों के साथ एक कमिटमेंट की थी कि जिस प्रोडक्ट को ढेर सारा प्यार मिलेगा ना आवाम की तरफ से, हमारे यूजर जितना हमारी किसी प्रोडक्ट को ज्यादा पसंद करेंगे, हमारा दावा है, वादा है कि हम उस प्रोडक्ट की कीमत को कम करेंगे। यानी कि पहले अगर 10 बिकती थी, वो 15 बिकना शुरू हो गई, तो हमारी सेल बढ़ गई, हमारा मुनाफा बढ़ गया, तो वो उस मुनाफे में आपको हिस्सा हम वापस लौटाएंगे। ठीक है जनाब, तो 180 रुपए से हमने जनाब इसकी कीमत 150 रुपए कर दी। अब कोई दुकानदार रियायत करना चाहे तो 140 में भी आपको दे सकता है, 130 में भी दे सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन फिक्स रेट इसका जो है वो 150 रुपए है। क्या है जनाब केसन का? केसन हाजमा कंट्रोल सिरप। जी जनाब, क्या कहते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में?
1: कंट्रोल।

जनाब, कैसे इनका हाजमा कंट्रोल सिरप डिमांड ज्यादा होने की वजह से, पॉपुलैरिटी ज्यादा होने की वजह से, लोगों को फायदा ज्यादा देने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह एक पॉपुलर ब्रांड बन चुका है इस वक्त मार्केट का। और ये वो प्रोडक्ट है जनाब, केसन की जो जो हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट है ना, ये दवाइयां नहीं है भाई, ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है। ठीक है जनाब, ये सप्लीमेंट है कि हम आपको नेचुरल इंग्रेडिएंट से आप लोगों को शिफा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये वो प्रोडक्ट है जो आप बगैर डॉक्टर के कंसल्टेशन के इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है जनाब, ये कोई केमिकलाइज चीज ऐसी नहीं है जैसे कि आपने दर्द वाली गोली ले ली अपने अपनी तरफ से, और वो चूंकि केमिकलाइज फार्मूला है उसने केमिकल एक्शन दिखाना है आपके बॉडी के अंदर, तो वो आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन केसन के जो प्रोडक्ट है, जैसे वेट कम पेट कम है, जैसे हमारा शिफाए दर्द है, जैसे गो पिंपल है, या फिर जैसे हाजमा कंट्रोल सिरप है, ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है। ठीक है जनाब, आप विदाउट कंसल्टेशन के भी इसको यूज कर सकते हैं। और ये गर्मियों के लिए बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है, क्योंकि गर्मी के अंदर जितने मैदे के मसाइल बढ़ते हैं, सर्दियों के अंदर नहीं बढ़ते हैं। उस दिन पे मैं आपको बता रहा था कि जनाब गर्मी के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं ना, जो जरासीम होते हैं, उनकी अफजाइश बहुत तेजी के साथ होती है, उनकी प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन जिसको हम कहते हैं, प्रोडक्शन नहीं होती है, रिप्रोडक्शन जो होती है, रिप्रोडक्शन, वो बहुत जल्दी होती है। गर्म और मरतूब मौसम में खाने पीने की अशिया आप देखते हैं कि अक्सर जनाब बैक्टीरिया, जैसे कि साल्मोनेला एक बैक्टीरिया, साल्मोनेला टाइफी, जिन्होंने मेडिकल पढ़ी होगी तो उन्हें अच्छी तरीके से पता होगा ये बैक्टीरिया बहुत नुकसानदेह होते हैं, साल्मोनेला टाइफी और साथ में इकोलाई पी मुरब्लस। ठीक है, ये दो तरह के बैक्टीरिया हैं जो कि गर्मी के अंदर आपके घरों के अंदर घुस जाते हैं जनाब। ठीक है जनाब, जबरदस्ती गुजर जाते हैं, खाने पीने की अशिया में चले जाते हैं, और फिर क्या होता है कि जनाब बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। सबसे बड़ा फूड पॉइजनिंग होता है कि जनाब खाना खाते हैं तो जहर बन जाता है, जहर, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। बहुत सारे लोग खाना जब खाते हैं तो कुछ देर के बाद वो कुछ ऐसा होता है कि आपकी कोई चीज बाहर पड़ी होती है, ये साल्मोनेला टाइफी और पी मरबलस इकोलाई, इकोलाई आई थिंक अगर मैं भूल नहीं रहा था, इकोलाई जो है नेगेटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, एक ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। सो उसमें ये जो साल इकोलाई है ये बहुत खतरनाक होता है, तो ये आपकी पड़ी हुई चीजों में जब चला जाता है और खाना खा लेते हैं तो क्या होता है जनाब के आपके आपको फिर खट्टे डिकार आना शुरू हो जाते हैं, आपको कड़वा सा कुछ लिक्विड आपके मुंह को आता है, वो फूड पॉइजनिंग होती है, आपका खाना जो है

0: बन चुका होता है। अब ऐसी सूरत हाल में भी आप चाहते हैं कि आप डॉक्टर के पास चले जाएं, लेकिन उससे पहले हम आपको कहेंगे कि अगर आपके पास आजमा कंट्रोल सिरप पड़ा है और आपको लग रहा है कि फूड पॉइजनिंग आपको हो गई है और खट्टी डिकारें शुरू हो गई हैं और अंदर का लिक्विड आपकी खुराक की नाली से मुंह की तरफ आ रहा है, बहुत ही खट्टा है, ठीक है जनाब, इसका मतलब है फूड पॉइजनिंग आपको हो गई है, तो आप हाजमा कंट्रोल पियेंगे तो जनाब अगले 10 मिनट के अंदर शांत होंगे। अगले 10 मिनट के अंदर आज कौन हमारे पास आया हुआ था केसन शॉप पर? शाह साहब इस वक्त सुन रहे होंगे, दराबन चुंगी से मेरे ख्याल में उनका, और वो आए हुए थे हफ्ता पहले, वो शिफाय दर्द लेके गए थे, हमारे साइलेंट लिसनर हैं, और आज फिर वो हाजमा कंट्रोल लेने के लिए आए हुए थे। तो वो कह रहे थे कि भाई मैं जो शिफाय दर्द लेकर गया हूँ ना, यकीन कीजिए कि मेरी बीवी 80% ठीक हो चुकी है। वो लंगड़ा के चलती थी पहले, ठीक है जनाब, और बड़ा मसला था, तो मैंने जैसे इस्तेमाल किया है तो आप यकीन करें कि वो खुश हो रहे थे। लव मैरिज थी उनकी, तो लव मैरिज में तो फिर वैसे मियां बीवी के दरमियान मोहब्बत होती है, और किस्मत वाले हैं कि उनको मर्जी की मिल गई, तो हाँ जी, और माशाल्लाह इस उम्र में, जिस उम्र में वो थे माशाल्लाह मैच्योर उम्र थी, उसमें भी इतना ही ख्याल रखने अपनी बीवी का, अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को हमेशा सलामत रखे। तो वो बहुत खुश थे, बेसिकली तो पार्टनर की खुशी उनके चेहरे के ऊपर झलक रही थी कि मेरी बीवी माशाल्लाह ठीक हो रही है, 80% कहते हैं कि उनके जोड़ों का दर्द खत्म हो गया है। तो उनके मैदे का मसला रहता है, तो मैं इंतजार में था कि ये हाजमा कंट्रोल कब आएगा, तो मैंने उनको, अच्छा जी अभी जो ये हमारा नया बैच आया है आप लोगों के पास, ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है पहले हाजमा कंट्रोल से, फार्मूला वही है, सब कुछ वही है, इसको हमने मजीद बेहतर किया। एक तो ये वाइट होगा अब, ठीक है जनाब, वाइट ओपिक है, ठीक है जनाब, और साथ में क्या होगा कि ये गाढ़ा है, पहले जो आप सिरप आपको मिल रहा था ये उससे बहुत इंप्रूव किया हमने, तो कीमत कम की है लेकिन इसकी क्वालिटी को बहुत बेहतर किया हमने। ये जब आप पियेंगे ना आपको पता चलेगा कि भाई ये क्या चीज इन्होंने लॉन्च कर दिया, रीलॉन्च यू, सेकंड बैच आ रहा है हमारा आप लोगों के पास ना। एक तो आप ये पहले ट्रांसपेरेंट थोड़ा सा हल्का ग्रीन होता था, अभी जो है ना ये बिल्कुल व्हाइट होगा, बिल्कुल व्हाइट और गाढ़ा, पहले से ज्यादा ये गाढ़ा होगा, यानी कि मुंह में डालेंगे तो ढक्कन के अंदर शहद की तरह रह जाता है, फिर से खाली नहीं होता, तो ये पहले से ज्यादा महंगा है लेकिन आपको हम बचत दे रहे हैं। आप ये पियेंगे तो आप मुझे बताएंगे कि आपको ये जो इम्प्रूव हमारा फार्मूला है हाजमा कंट्रोल का, ये कैसे लगा। अच्छा तो वो भाई कह रहे थे शाह साहब कि भाई मैं इसलिए, फिर मैंने उनको पिलाया उसी वक्त एक चम्मच पिलाया, मैंने क्या बताया, कहते हैं अंदर तक ठंडक। बस आरजे तासीर जो पहले आप हमारे साथ प्रोग्राम करते थे, अभी वो नहीं करेंगे प्रोग्राम क्योंकि उन्होंने किसी और कंपनी को ज्वाइन कर लिया है और वो उसका प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है जनाब। तासीर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका बेहद शुक्रिया, उन्होंने वक्त निकाला, ईद के दिनों में आए और मेरी छुट्टियां के बावजूद उन्होंने टाइम दिया अपनी छुट्टी को इल्तवा में डालकर, तो लेकिन अभी वो केसन का प्रोग्राम हमारे साथ कंटिन्यू नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने किसी और कॉस्मेटिक कंपनी के साथ जो है एग्रीमेंट किया है, तो वो अभी उनके साथ रेगुलर प्रोग्राम करेंगे ना। यहाँ तो वो भाई बिरादरी के ऊपर आते थे ना, यानी कि दोस्त थे मेरे, तो मैं उनको बुला लेता था कि 2-3 दिन के लिए आ जाओ, तो वो आ जाते थे, तो अभी वो किसी कंपनी के साथ प्रॉपर काम करेंगे, ठीक है जी। उनका अगेन बहुत शुक्रिया मैं अदा करना चाहूंगा। तो वो भी बैठे थे उस वक्त, उनको फिर मैंने एक चम्मच पिलाया, वो कहते हैं यार जैसे उन्होंने पिया ना चम्मच हाजमा कंट्रोल का, तो 10 मिनट बाद बोला यार ये तो हलक से लेकर ये तो पूरे जिस्म के अंदर ठंडक फैल गई है, क्या चीज है इसके अंदर यार, ये तो मुकम्मल तौर पर कहता है कि मेरी पूरे खुराक की नाली से लेकर मैदे तक बिल्कुल ऐसे लग रहा है किसी ने बर्फ डाल दी। तो मैंने कहा ये इलायची, पुदीना, यूकलिप्टस, सौंफ का बहुत ही जबरदस्त किस्म का फार्मूला है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, ठीक है जनाब। और मैं कहता हूँ कि हर घर के अंदर ये होना चाहिए भाई, डिस्प्रीन घर में रखते हैं, पेनाडोल घर में रखते हैं, तो भाई केसन का हाजमा कंट्रोल सिरप अपने घर के अंदर जरूर रखें। एक तो फूड पॉइजनिंग होती है गर्मी के अंदर बहुत ज्यादा, पानी की कमी बहुत ज्यादा हो जाती है, पानी की पसीना होता है, पसीना के जरिए जिस्म से पानी और नमकियात तेजी से निकल जाते हैं, पानी की वजह से आंतों की कारकर्दगी सुस्त हो जाती है। आपकी बॉडी के अंदर जितना पानी होगा ना आपकी आंतें उतना काम करती हैं, आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, निजाम उसमें आपकी आंतों का काम होता है ज्यादातर, तो जितना पानी होगा ना आपके पेट के अंदर तो आंतें पानी के अंदर जितना रहेंगी उतना अच्छा काम करेंगी, क्योंकि पसीने के थ्रू सारा पानी आपके जिस्म से निकल जाता है, तो कारकर्दगी बहुत ज्यादा मुतासिर हो जाती है, आंतों की डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कब्ज हो जाएगी, बहुत ज्यादा कब्ज लोगों को गर्मी में होती है, ठीक है जनाब, और इसकी वजह ये होती है कि आंतों में पानी नहीं होता, ठीक है जनाब, पसीने की सूरत में निकल जाता है, शदीद कब्ज और तेजाबियत का बायस बनती है जब पानी की कमी आपके जिस्म के अंदर होती है। तो जनाब हाजमा आपका मुतासिर होगा, अनकंट्रोल होगा जनाब, और कहते हैं कि हाजमे का निजाम सुस्त हो जाता है। शदीद गर्मी में जिस्म अपना दर्जा हरारत बरकरार रखने के लिए खून का जो बहाव होता है ना जिल्द की तरफ ज्यादा और मैदे की तरफ कम कर देता है। ये भी एक नई बात है भाई, ऐसी ऐसी बातें कौन बताएगा आपको। हाँ जी डॉक्टर लोग हैं हम यार, पढ़े लिखे लोग हैं। जिसम अपना दर्जा हरारत बरकरार रखने के लिए खून का बहाव जिल्द की तरफ तो करता है लेकिन मैदे की तरफ खून की रवानी को मुतासर कर देता है, जिसकी वजह से बदहजमी और खाना देर से हजम होगा। गर्मी में एज कम्पेयर सर्दी जो है, गर्मी में आपका हाजमा बहुत सुस्त हो जाता है और ये वजूहत होती हैं जिसकी वजह से आपको हाजमा कंट्रोल सिर्फ केसन का घर में जरूर रखना चाहिए। कुदरती तौर पर गर्मियों के अंदर रुक जाता है। किसी डॉक्टर से जाके पूछते हैं, भाई खलील भाई तो कह रहे थे कि गर्मी के अंदर जो है हाजमा सुस्त हो जाता है, मैदा काम तो सही नहीं करता, हाजमा ठीक नहीं होता। आप पूछ लें उसे कि खलील भाई गलत तो नहीं कह के, वो कहेंगे कि खलील भाई बात भी ठीक कह रहे थे और वो जो कह रहे थे ना कि हाजमा कंट्रोल भी घर में रखो तो वो भी ले जाओ, ठीक है।
1: बदहजमी
0: तो जनाब, अच्छा फूड पॉइजनिंग गैस्ट्रो का मैंने आपको बता दिया, खराब खानी और आलूदा पानी भी डायरिया का सबब बनता है। गर्मी में बहुत ज्यादा लोगों को पेट खराब होता है, ये वजह होता है कि जो बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन हो रही होती है, अफजाइश बहुत तेजी के साथ होती है और वो खानों में घुस जाते हैं, पानी के अंदर घुस जाते हैं, आपकी दूध खराब हो जाता है, खाने खट्टे मीठे हो जाते हैं। तो वजह यही होती है कि गर्मी में जरासीम बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो जनाब गर्मियों में तली हुई मसालेदार अशिया, सॉफ्ट ड्रिंक का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा गर्मी में बहुत ज्यादा लोग कोल्ड ड्रिंक्स पियेंगे जनाब, कोल्ड ड्रिंक्स तेजाब आपके तेजाबियत को बढ़ाती हैं और जिसकी वजह से आपको मैदे के मसाइल बहुत ज्यादा तेजी के साथ, यही वजह होती है कि फिर मैदे का भारीपन महसूस होगा, खट्टी डिकारें वगैरह आपको आएंगी, हैजे के मसाइल हैं, ठीक है जनाब, ये सारी चीजें। सो कुल मिलाकर बात क्या है जनाब आप लोगों के सामने, वो ये है कि जनाब गर्मी जो है ये सिर्फ आपकी स्किन को खराब नहीं करती है कि हम आपको बोलते हैं जाफरानी साबुन लगाएं भाई चेहरा साफ रहेगा, ठीक है जनाब, सूर्य की शुआएं आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अच्छा एक और प्रोडक्ट हमारी शार्ट थी जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी, एक तो हाजमा कंट्रोल की बहुत ज्यादा डिमांड थी, एक प्रोडक्ट जो हम गर्मियों में स्पेशली बहुत ज्यादा हमारी चलती है वो ब्यूटी स्प्रे है, स्किन टोनर। मुझे दुकानदारों के बहुत सारे कॉल, जैसे फ्रेंड्स एंड फैमिली शॉपिंग सेंटर, जैसे कि जीशान, जैसे कि नवीद पहाड़पुर की बात कर रहा हूँ, ठीक है जनाब, जैसे कि हसीब जनरल स्टोर, जैसे कि हैदर, जैसे कि हसन भाई, सबकी तरफ से ऑर्डर आए हुए थे कि ब्यूटी स्प्रे बहुत ज्यादा लोग मांग रहे हैं। तो भाई ये वो लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनको पता है कि भाई सिर्फ गर्मी में सिर्फ साबुन से मुंह नहीं धोना है, सिर्फ फेस वॉश से मुंह को नहीं धोना है, बल्कि केसन का ब्यूटी स्प्रे इस्तेमाल करना है। क्योंकि जब ये लगाकर आप घर से बाहर निकलेंगे तो गर्दो गुबार सूरज की तपिश आपकी स्किन को खराब नहीं कर पाएगी, ठीक है जनाब, क्योंकि ये विटामिन सी और अर्के गुलाब से बना हुआ एक मिक्सचर है जो अर्के गुलाब आपकी स्किन को तरोताजा रखता है, मुरझाने नहीं देता, आपकी झुलसी हुई स्किन, तली हुई स्किन, ठीक है जनाब, हरारा से भरी हुई स्किन को ये ठंडक प्रोवाइड करता है अर्के गुलाब की सूरत में, और विटामिन सी जो है वो सूरज की खतरनाक शुआएं को रोकता है। तो ये भी अवेलेबल हो चुका है हर जगह, ठीक है जनाब। आप जो जो मेरी बहनें मांग रही थी और ब्यूटी स्प्रे जिन जिन को नहीं मिल रहा था, आज हर जगह हमारा केसन का ब्यूटी स्प्रे जो आपको सिर्फ 200 रुपए में मिलता है, ठीक है जनाब, विटामिन सी और अर्के गुलाब से बना हुआ ये स्किन टोनर है और गर्मी में ये अपने ऊपर फर्ज कर लीजिए, इसके बगैर आपने घर से निकलना ही नहीं है, इसके बगैर आपने घर से निकलना ही नहीं है जब तक केसन ब्यूटी स्प्रे को स्किन के ऊपर लगा के नहीं जाएंगे। और मैं यकीन कीजिए आज मैंने प्रोग्राम आप लोगों के साथ थोड़ा सा हटके करना था, लेकिन चलो कल उस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, लेकिन मुख्तसर आज मैं आपको बताता चलूं, मेरी तो वो तमाम बहनें जिनकी छाइयां जाती हैं और फिर वापस आ जाती हैं, जिनकी छाइयां जाती हैं और फिर वापस आ जाती हैं, मैं उनको ये बोलूंगा कि वो क्रीम जो भी लगा रही हैं, हम ये नहीं जबरदस्ती कहते कि केसन की क्रीम लगाएं, केसन की लगाएंगे तो आपका अपना फायदा है, क्योंकि ये वाहिद क्रीम है जो जाफरान से बनी हुई है, जो कि आपकी स्किन के ऊपर गैर जरूरी बालों का खात्मा करती है, ठीक है जनाब, जो कि आपकी स्किन के ऊपर जो गैर जरूरी बाल है उनकी ग्रोथ को रोकती है क्योंकि इसके अंदर जाफरान मौजूद है। लेकिन अगर आप नहीं लगा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा रहे तो जो भी क्रीम लगा रहे हैं ना, जो भी इस्तेमाल करें उसके साथ स्प्रे केसन का यूज करें, केसन का ब्यूटी स्प्रे, आपकी छाइयां वापस नहीं आएंगी, मैं आपको गारंटी देता हूं। कोई भी क्रीम उठा के देख लो, कोई भी ब्रांड आप यूज करते हैं, कोई भी एक्स वाई, ठीक है जनाब, आप दिन के वक्त 2 दफा ब्यूटी स्प्रे केसन का इस्तेमाल करें, 2 दफा यूज करें, अगर आपकी छाइयां वापस आ जाएं, हालांकि क्रीम आप हमारी नहीं, हो सकता है हमारी लगा रहे हो, लेकिन अगर कोई भी लगा रहे हैं तो गारंटी हम दे रहे हैं आपको, क्रीम किसी और की लगा रहे हैं ना आप, लेकिन गारंटी हम आपको दे रहे हैं कि छाइयां वापस नहीं आएंगी अगर डे टाइम में आप केसन ब्यूटी स्प्रे को दिन में दो दफा इस्तेमाल करेंगे। ये कहानी क्या है ये आपको कल बताएंगे कि जनाब किस तरीके से ये छाइयों को रोकता है केसन ब्यूटी स्प्रे।
1: मतलब
0: लेकिन मतलब क्या है,

अब ये जो तेजाबियत बदहजमी फूड पॉइजनिंग का शोर है, इसका तोड़ है आप लोगों के पास, और वो केसन का हाजमा कंट्रोल सिर्फ की सूरत में मौजूद है। कीमत को हमने कम कर दिया जनाब, सिर्फ 150 रुपए का आपको मिलेगा। इसके ऊपर रेट मेंशन है जनाब, और पहले से ज्यादा गाढ़ा, पहले से ज्यादा ठंडक देने वाला, पहले से ज्यादा अच्छा सिरप बनाकर हमने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है, जो कि इस दौर का एडवांस फार्मूला है। बिल्कुल जनाब, और इतनी क्वांटिटी चीजों के अंदर है कि अगर आप 24 घंटे में सिर्फ एक चम्मच भी इसका लेंगे तो मैदे के अंदर गर्मी नहीं होगी, बदहजमी नहीं होगी, गैस नहीं होगा, तेजाबियत नहीं होगी। तो जनाब इस प्रोडक्ट के ऊपर टूट पड़े, खरीदे नहीं जनाब, टूट पड़े इसके ऊपर, और देखें कि जनाब ये सिरप, इस सिर्फ एक चम्मच 24 घंटे में, वो लोग जिनको मैदे के मसाइल का शिकार है, जैसे कि उनको बदहजमी हो जाती है। अच्छा, ये भूख लगाने में बहुत जबरदस्त है, किसी को भूख नहीं लगती तो जैसे अगर दोपहर का खाना खाना है तो 10 बजे इसके 2 चम्मच ले लें, रात का खाना है तो असर के वक्त 2 चम्मच ले लें, फिर आप देखें कि आप कितना खाना खाते हैं। बहुत ही जबरदस्त एपेटाइजर है। बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं, भूख लगाने वाले अलहदा से सिरप बनाती हैं और हाजमे को ठीक करने वाले अलहदा से सिरप बनाती है, यानी कि डबल डबल पैसे कमाती है। हमने एपेटाइजर प्लस एंटासिड फार्मूला बनाया है। केसन का ये जो हाजमा कंट्रोल सिरप है, ये एपेटाइजर प्लस एंटासिड है, यानी कि ये भूख लगाने वाला भी सिरप है और साथ में आपके मैदे को ठंडक, आपके मैदे को सुकून, आपके मैदे को आराम पहुंचाने वाला, आपकी तेजाबियत को, जलन को, गैस को खत्म करने वाला केसन का हाजमा कंट्रोल।

0: जनाब, आपका वक्त स्टार्ट हुआ चाहता है अब, और डेर इस्माइल खान समेत पहाड़पुर के लोग, टांग के लोग और डेर इस्माइल खान के लोग मुझे ज्वाइन कर रहे हैं 03449366336 के ऊपर। पहले कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू।
0: सर सर सर नजर हसन, क्या हाल है जनाब? मोहतरम ठीक है आप?
1: मोहतरम खुश उम्मीद आते हैं। वेलकम वंस अगेन टू सवाला हसन के आगे। माशाल्लाह बड़ी साकू थारी शिदत नाल कमी महसूस है
0: जी। अच्छा जी, त्रै दिवरा साकू मिस कीता है वे? वैसे सच है, अगर कह को याद करो तो थोड़े लग दे
1: रात दी बहुत ठीक याद करने ला लो।
0: अच्छा चलो ठीक है, सही ठीक है। मैं क्या हाजमा कंट्रोल सीरा वजह तो कोई ईद तो नहीं पिलाया, लेकिन हूं आ गया वैसे ही। हाँ बिल्कुल, पहले को ज्यादा बेहतर वाइट कलर ही मजीद ठीक, यानी की चमच को बड़े औखे ते निकल सी होने सही। परहेज करो अपने जेब के मुताबिक,
1: बेहतरीन सीरत है वाकई। मैं सदा ही पी लेंदे ते बेहतरीन, मतलब नॉर्मल भी कर दें, फूड पॉइजनिंग खत्म पी लें,
0: बिल्कुल हाजमा अनकंट्रोल, हाजमे को भाई कंट्रोल गिनना वाली प्रोडक्ट जरी हो केसन हाजमा कंट्रोल सिरा पे ते 3 रुपए मजीद असा इन प्राइस कम कीती है। अच्छी गल है, कुते अप्रिशिएट तुसा नहीं कीता के 3 रुपए शायद सस्ती कीती, लोग महंगियां करन ने
1: माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं ये तो बहुत बड़ी गल है, लोग ज्यादातर गरीब हैं, मतलब हर कहंदी अप्रोच नहीं होदी 180 या इतने ज्यादा पैसे हो 150 जादी माशाल्लाह
0: 150 रुपए दे प्राइस की। तुसा देखो के मतलब है कि 2000 पैक अगर सारा विके तो 60,000 रुपया, असा 60,000 रुपया गरीबां दी जेब भी सट छोड़ा
1: 60,000 रुपया।
0: और ये 30 रुपए लोगों को लग रहा होगा कि भाई ये 30 रुपए क्या होते हैं भाई, एक कंपनी के लिए ना आपने देखा होगा कि कंपनी के जो रेट लिखे होते हैं ना 74 रुपए 10 पैसे, 75 रुपए 95 पैसे, यानी कि कंपनी के लिए पैसे भी अहमियत रखते हैं क्योंकि लाखों की तादाद में चीज बन रही होती है ना। अब देखें हमने एक प्रोडक्ट के ऊपर 30 रुपए काम किए हैं, तो अगर ये महीने की 2000 बिके तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि 60,000 रुपए हमने अपना प्रॉफिट निकाल कर आप लोगों की जेब में डाल दिया। वो हो सकता है किसी के नसीब में 60 रुपए है, अगर 2 सिरप इस्तेमाल करे 3 इस्तेमाल करेगा तो 90 रुपए है, लेकिन हमारे लिए वो 60-70 हजार रुपए है जो हमने अपने प्रॉफिट में से निकाल कर आप लोगों के लिए इसकी कीमत को 30 रुपए कम करके आपकी जेब में डाले। राजा गफूर हमारे साथ हैं जी, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम, फर्जी करियत
0: है? अल्हम्दुलिल्लाह सही, तुसा सुनो ठीक ठाक ही वे पंजाब वालो?
2: बिल्कुल पंजाब वाले ठीक ठाक ही, खैर खरीयत ला लें, तुसा हाल दे हो?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हारे पास है जेरी प्रोडक्ट सारी बहुत ज्यादा बिकदी है, हाजमा कंट्रोल सिरप सही 180 कुल 150 रुपए से कीमत कर छोड़ी है।
2: क्या बात है, लोग चिंता उतरे ले लें तो उतरने की दिया
0: ले, इंशाल्लाह जेरा सिरप तुसा पीसो ना सही। मेरी गाल सुनो राजू गफूर साहब, ए जेरा सिरप पीसो ए पहले कुल ज्यादा गाढ़ा ठीक है जनाब, पहले को ज्यादा ठंडक देवन वाला ते पहले को ज्यादा वाइट ते बहुत ही प्यारा इन दफा तो सिरप से बढ़ा के देते सिंह।
2: लेकिन बढ़ाया तो अच्छा है, लेकिन कीमत इन बिल्कुल जरा ना कम की थी, बड़ा अच्छा की थे।
0: पहले को ज्यादा जेरे लोग ही हाजमा कंट्रोल पहला 5-6 हजार सारी बोतल पी चुके हैं पहला बैच, तो इंशाल्लाह जेले पीसे तो ऑक्सीजन के वाकई इन्होंने तक कीमत कम करके भी पहले को ज्यादा बेहतर सिरप बढ़ा छोड़ा है हाजमा कंट्रोल।
2: मेरे को एक डॉक्टर साहब बैठे ने सही दुकान पे, तो उनका सीरा भी सामने पाई आई ना, उन्हें चरा के चेक की थी, वो आज पहले सिरप केड़ी धातु आई है थी कितु आई है, मैं के जी एक कंपनी है केसन कंपनी डेर इस्माइल खान है,
0: जितने भी मैदे वाले सिरप है ना, कोई सिर्फ पुदीने का बना हुआ, कोई सिर्फ सौंफा का बना हुआ, इन चार वे शैया पुदीना सौंफ इनके अलावा जो रहना यूकलिप्टस इन शामिल है, अलायची शामिल है, बहुत एडवांस फार्मूला है। सही
2: सर जी, उन्हें चेक करके तो मैं कहूंगा उनका रिजल्ट दसा है, उन्हें बड़ी बेहतरीन चीज बनी हुई है जी।
0: बस उन्हें को आखो कि हुन वला के आवन ते भाई कंपनी इतने बड़े दिल आ लिए कि को मजीद ही सस्ता कर छोड़ा से पहले कोई बहुत बेहतरीन कर छोड़ा जी।
2: बड़ी मेहरबानी, अल्लाह को खुश रखे। चाचा फतेह खान नजर आसान मेंबर का जान और लाला शरीफ जामरी की सुन देता है उसने
0: जनाब। थैंक यू वेरी मच राजा गफूर हमारे साथ पांजगी रही से। और ये पंजाब के जितने भी लोग हैं, आज चूंकि 97.4 को मजीद अपग्रेड किया गया है तो आवाज दूर दराज तक जारी होगी। तो भाई राजा गफूर हमारा सेल पॉइंट है पंजगिराई में सादात कंडे के साथ, ठीक है जनाब। वजन करने वाला कंडा होगा कोई सादात कंडा, तो आप वहां पर जाएंगे तो आपको केसन के सारे प्रोडक्ट वहां पर मिलते हैं, ठीक है जनाब। उनके पास तकरीबन ए टू जी सारे प्रोडक्ट्स हमारे मौजूद होते हैं, आप वहां से हासिल कर सकते हैं। और ये हमारा हाजमा कंट्रोल सिरप है। और गर्मियों में क्या क्या इस्तेमाल करना चाहिए भाई आपको, हम मौसम के मुताबिक स्किन और रिजीम बताते हैं हमेशा कि भाई अब क्या इस्तेमाल करें। तो भाई गर्मी है तो भाई जाफरानी साबन का सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। जाफरानी साबन गर्मियों में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसके अंदर जो संदल है, हल्दी है, जाफरान है, ये तीनों चीजें गर्मी के दुश्मन है, ये तीनों के तीनों चीजें गर्मी के दुश्मन है। और आपकी स्किन इफेक्ट होती है बाहर की टेम्परेचर से, ठीक है जनाब, यानी कि धूप से। तो जब आप इस्तेमाल करेंगे जाफरानी क्रीम और जाफरानी साबन, ठीक है जनाब, और जरूर इस्तेमाल करें, चाहे आप फेस वॉश इस्तेमाल करने वाले हैं, चाहे आप साबन को इस्तेमाल करने वाले हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ साबन इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं। आप क्लिंजिंग का कोई भी टूल यूज करें, ठीक है जनाब, चाहे आप साबन से चेहरा धोएं, चाहे आप जो है फेस वॉश से चेहरा धोएं, तो आपने क्या करना है जनाब, उसके धोने के बाद जो है आपने अपने चेहरे को तौलिए से खुश करने के बाद ब्यूटी स्प्रे को इस्तेमाल करना है और फिर घर से निकलना है। एक कॉलर है हमारे साथ जी, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम
0: जनाब, कौन है हमारे साथ, नाम बताएंगे अपना?
3: सर मुनीर हुसैन लक बोलेंदा पिया लक लांचो
0: वत भरा सम भूल गए तुम्हारा कम।
3: सर मैं जरिया खान सारी दुकान पे गया सामान गिनन।
0: अच्छा जी,
3: एक को मिले दर्द शफा इलाज।
0: ताजमहल बेकरी तक गया वे
3: ताजमहल बेकरी थे।
0: अच्छा, यही को शिफा दर्द मिले थे?
3: ना जफरानी सो मिल रहा है, ना ब्यूटी वो स्प्रे मिल रहा है।
0: ब्यूटी स्प्रे भी तो आपको नहीं मिला? ओए होए,
3: बस दिया वेट कम पेट कम पक्की भी नहीं मिली,
0: वेट कम पेट कम ही नहीं मिली, बस उतना सारा थोड़ा जिया उस समय जो सारा कोई रोला शोला चलता वे पेमटा का
3: समान चुग गिनो चा गिनो
0: नहीं, असल उन्होंने को मसला सारा चलता पे थोड़ा असिया सेल पॉइंट बढ़ा के ना तो इनशाला तो जरूर दसेसो, क्योंकि उन्होंने को कुछ समान तुसा ओशिया कितने जेरे उन्होंने को शार्ट ही ना ओ कौन इन अलावा बे सोप पे पे होसे फेस वॉश ही उन्होंने को बे पे होसे
3: मैं सोप पाया लेकिन जफरानी सोप जफरानी
0: नो होसी फेस वॉश भी पे होसे क्रीम ही पे होसे बहुत सारे बहरहाल उन्होंने क्लियर करके ऐसा तो बिया इनशाला सेल पॉइंट दसेसो दरिया खान दा। लेकिन अगर तुसा नजदीक पौने ए पंज गिरई त राजा गफूर भरा को लगे वजो तो को सब छ उन्हां दे कोल मिल वैसे رابطہ कर के ने
3: उन्हां पंज गिरई सा को दूर थी ना दरिया खान सा को नजदीक थी ना।
0: अच्छा चलो ठीक है, बात इंशाल्लाह उथे को बिया पॉइंट बढ़ा के तो को जरूर दिसे सु इंशाल्लाह, ठीक है भरा खान।
3: ते वो 700 रुपए रिटा ने दो तरीका के कार इस दा दर्द शफाइल शुक्र मुगल दा।
0: हां उन तरीका कार ही में के सही जोड़ा दा दर्द होवे या कमर दा दर्द या कोई भी झाजी ये रिझा मुतर
3: कमर दा दर्द ते इस मोरा दा मसला है मेरे घर
0: ला बस उकु थोड़ा जिया के बर्तन च गिन के ना शिफा दर्द को, ठीक है जी, उकु थोड़ा जिया में गरम करके, ठीक है जनाब, ता कमर दो जेरे मतलब एक मोर वाले जहाज उत सट के में तो मतलब एक मालिश करो, इतनी मालिश करो कि मुकम्मल तौर पे जज्ब थी वजे कमर दे विच, बस उन्हें बाद छोड़ दो, एक कम से कम दो या त्रै दफा दीवार करो तो इंशाल्लाह त्रै दिया तो को वाजे तौर पे पता लग वैसी कि ने कितना जबरदस्त काम किया है, ठीक है सही। हवाले की क्लियर करो नवा सेल पॉइंट बनाओ ना तो मैं आज उन्होंने को रिपोर्ट दिना के वो केरी रिपोर्ट देने तन के बाद बात इंशाल्लाह तो ना रब्ता करके कैसर भट्टी ये जोन वे उते इंशाल्लाह सेल पॉइंट बढ़ा दे ठीक है सही
3: ते भी अच्छा साहब वैसे भी मेरे को नहीं भेजा जा रही जितने प्रोडक्ट में आपके
0: बस वो आज तक मिल वैसे इंशाल्लाह बस कल तक आज तक इंशाल्लाह पहला पहला काम शो दे बाद सही हो करे ठीक है सही मुनीर
3: हुसैन ठीक है मेहरबान सारे आप एक बार पूरा सामान करो सही तो बात है गिनो सही तो
0: जरूर जरूर जरूर जरूर इंशाल्लाह जी ये गाल होंदी है कि कोई दुकानदार दे मसले मसाइल बन वंजे सारे वास्ते तो अवेलेबिलिटी दा मसला थी वेंदा है तो इंशाल्लाह जी जफर दरिया खान में हम इस सेल पॉइंट की जगह कोई और आपको बताएंगे क्या आप से मोहम्मद अजहर पहाड़पुर से हमें सुन रहे हैं जनाब कह रहे हैं कि प्रोग्राम बहुत अच्छा है जी आप भी बहुत अच्छे हैं भाई
4: एक ही
0: जी जनाब केसन हाजमा कंट्रोल सिरप जो है पहाड़पुर में आपको हर जगह मिलेगा जहाँ जहाँ केसन के प्रोडक्ट मिलते हैं ना वहाँ पर हमारा हाजमा कंट्रोल भी होता है ठीक है जनाब और इसकी डिमांड माशाल्लाह आज चूंकि हमारे पास स्टॉक पहुंचा है ना तो हर दुकानदार ने इसका कार्टन कार्टन मंगवाया आज यानी कि किसी ने भी नहीं कहा कि एक दर्जन दो दर्जन जिस तरह हो सके क्योंकि उन्हें पता है कि भाई इस प्रोडक्ट को अब लोग कितना प्यार देते हैं और इतने सारे कंपनियों के हाजमे के सिरप होने के बावजूद भी केसन का मांगा जाता है तो इसके अंदर कुछ है तो आप यकीन कीजिए कि हर दुकानदार की तरफ से आज हमें कार्टन कार्टन काट रहे हुए थे कि भाई इससे कम नहीं भेजना तो हमने सबको भेज दिए डेरस मिलखान में हमारी अपनी शॉप है केसन शॉप और वहां से भी हासिल कर सकते हैं जफराबाद के वो लोग मेरी वो बहने भाई भाई जिनके मैदे खराब हैं जिनको तेजाबियत होती है सीने के अंदर तेजाबियत क्या होता है सीने के अंदर जो जलन होती है उसको तेजाबियत कहा जाता है ठीक है जनाब तो आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपकी वो मसला भी हल होगा खाना बाज लोगों को भूख नहीं लगती इसको इस्तेमाल करें भूख लगेगी आपको ठीक है जनाब जलन है इसके अलावा बदहजमी है हैजा है पेट का दर्द में ये बहुत ज्यादा मुफीद है एक दो चम्मच पियेंगे तो फौरी तौर पर पेट का दर्द खत्म हो जाता है मोहम्मद हमजा केमटा मौजूद है हमारे साथ लेकिन उससे पहले एक कॉलर है हमारे साथ उनको मौका देते हैं अस्सलाम वालेकुम हेलो हेलो ओके जनाब शायद मेरी आवाज इनको नहीं जा रही मोहम्मद हमजा खेमटा पिपला मालिक से अच्छा जी पिपला से सुन रहे हैं मोहम्मद हमजा खेमटा भाई बताइए कि आपकी तरफ ट्रांसमिशन कैसी है हमारी 97 की खुश आमदीद रेडियो पैगाम पर और कहते हैं कि खूबसूरत प्रोग्राम है सब सुनने वालों को सलाम

0: फातिमा हमारे साथ पहाड़पुर से मौजूद है। कहते हैं भाई एफएम की आवाज पहाड़पुर में बहुत साफ आ रही है, पहले से भी ज्यादा साफ। भाई एफएम की सब भाइयों को बहुत बहुत मुबारक हो, यानी कि ये सराउंडिंग का एरियाज जो है पहाड़पुर वाले भाई, ये उनको अब माशाल्लाह आवाज क्लियर हो गई है, तो बिल्कुल जी मुबारक के मुस्तहिक है टीम रेडियो पैगाम पहाड़पुर के। उनका फोकस अपने सामीन तक अपनी आवाज को बहुत ही क्लियर और साफ पहुंचाना है, और ये एक एफएम की बुनियादी जो जरूरत भी होती है और लिसनर्स का जो बुनियादी हक भी है वो यही है कि हमारे सामीन तक, हमारे लिसनर तक, हमारे मीडियम की, हमारा जो भी फ्रिक्वेंसी है, चाहे पहाड़पुर में 97.4 है, डेरा में ग्लोबल एफएम 91 है और टांग में 88.4, ये सारे एफएम यहाँ के सामीन को हमारी आवाज बगैर किसी दिक्कत के सुनाई देनी चाहिए, और चाहे वो कमरे के अंदर मौजूद हो, चाहे कमरे के बाहर मौजूद हो, जहां पर भी बैठे हैं उनको किसी किस्म की दिक्कत ना हो कि जनाब वो जगह चेंज करें। सिग्नल्स की फरावानी इस तरीके से होनी चाहिए, तो आई थिंक रेडियो प्रोग्राम के मैनेजमेंट दाद के मुस्तहिक है कि उन्होंने अपनी आवाज को बहुत ही क्लियर और फ्रिक्वेंसी को हर घर तक पहुंचा दिया है बहुत इजीली, जैसे कि लोग कह रहे हैं कि भाई आवाज बिल्कुल ही साफ हो गई है, और मुबारकबाद पूरी टीम को।
1: एक ही तोड़ के सनहाजमा कंट्रोल सिरप
0: पहाड़ सर जी, जफराबाद की हम बात कर रहे थे, और ये जो लफ्ज है ना तेजाबियत, ये थोड़ा सा खतरनाक लफ्ज है, ये हर किसी को समझ नहीं आती कि ये क्या चीज होती है। तेजाबियत तो तेजाब होता है, तेजाब का मतलब क्या होता है? तो तेजाब का मतलब ये होता है भाई मेरे बहनों कि जब आप खुराक खाते हैं और आप कभी बहुत ज्यादा अगर खाना खा लें तो क्या होता है, आपके मैदे के अंदर तेजाब मौजूद रहता है कुदरती तौर पर, क्योंकि ये निजाम हाजमा के लिए जरूरी होता है, और जब आप कोई चीज खाते हैं तो वही तेजाब ही होता है जो आपके खाने को हजम करता है। किसी का मैदा हद से ज्यादा तेजाब पैदा करना शुरू कर देता है, जिसके बाद क्या होता है, जब आप खाना खाते हैं जैसे आपका मैदा फुल होता है खाने से, तो जैसे मैदा फुल होता है तो जो तेजाब होता है वो आपकी खुराक की नाली में आ जाता है। ठीक है जनाब, जो तेजाब होता है ना वो खुराक की नाली में आ जाता है और फिर आपको जलन होने लगती है, तो इसी को तेजाबियत कहा जाता है। ये जो हमारे ट्रैक के अंदर भी मौजूद है ना, तेजाबियत का एक लफ्ज आता है कि तेजाबियत का शोर, बदहजमी और गैस का शोर। शोर का मतलब यही होता है कि भाई किसी को अगर सीने की जलन है तो हर बंदे को कहता फिरेगा यार मेरे सीने में जलन होती है, मेरे सीने में जलन होती है। किसी को गैस का मसला है तो यार हर वक्त भारीपन महसूस होता है। किसी को बदहजमी है तो वो कहेगा यार मुझसे तो कोई हजम नहीं होती। इसको बोलते हैं शोर, और उसी शोर का तोड़ है केसन का हाजमा कंट्रोल।
1: एक ही तोड़ केसन हाजमा कंट्रोल से।
0: जनाब आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर्स आप लोगों के पास मौजूद हैं। कुछ लोग नए सुनने वाले होते हैं और उनकी ख्वाहिश होती है कि वो भी प्रोग्राम के अंदर हाजिरी लगवाएं, तो जनाब जी जनाब हमारा नंबर 0344-936-3366 जी जनाब 0344-936-3366 के ऊपर एक कॉलर है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल
2: है? खैरियत है, सेहत भी अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह।
0: अल्लाह की शुक्र जी। कौन इन सारे नाल नान से सो अपना सही?
2: या मैं ना अमानुल्लाह था सर, रईस गरम मिठू तू वाले ने मैं बकरिया वाला
0: गरम मिठू टांक एफएम सुनते पे तुसा मालूमात इजाफा सही
2: बहुत
0: प्रोग्राम सारा सुनते काफी अरसे को नवे तीन पे मतलब
2: शुरू किया
0: रमजान मार्केट याद है ठीक है हर जात मिल वैसी, लेकिन अगर उठा वैसे तो 100% मिल वैसी रियायत नाल शायद भी तुहाको मिल सी, ते उन्हें को रियायत करवाई करो क्योंकि वो सारा मेन सेल पॉइंट है ना, असा उन्हें को बचत देने होने फिक्स रेट उन्होंने न दिता करो ठीक है जी,
2: उन्होंने
0: आखा करो कि भाई 30-40-50 रुपए छोड़ो, खलील भाई ने आखा मेरे आखिरी तक करो बिल्कुल क्लियर
2: खलील भाई।
0: हाँ ठीक है सही, जो मोहम्मद हमजा केमटा कहते हैं कि पिपला में आज बहुत प्यारी ट्रांसमिशन आ रही है पहाड़पुर एफएम में। आज रजा अवान किधर है भाई? रजा अवान है जी, गायब हो गया बंदा। वो बहुत अरसा एंटीना छत के ऊपर लगाकर हमें सुनता रहा, फिर वो तंग हो गया कि बस बस सभी नहीं। तो रजा सुन रहे हैं तो भाई रजा हमें जरूर कॉल करें, हमारे शो में आए और हमारे शो को चार चांद लगाए। अच्छा जी, पहाड़पुर का मैंने दुकानदारों को बता दिया आपको, पहाड़पुर में चश्मा रोड के ऊपर कुंडी किताब घर एक सेल पॉइंट है, कुंडी किताब घर। आप वहां पर जाएंगे जनाब, जैसे कि वहां पर शेरवली कुंडी जनरल स्टोर है, नेम कुंडी है, वहां पर कुंडी किताब घर भी है, तो आप वहां से भी हमारी प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। ठीक है जनाब, जफराबाद में अब्दुलरहमान जनरल स्टोर, फैसल मार्केट में और हाजी जरी जनरल स्टोर, ये भी जो अल अजीज मार्केट है, पीछे वाली जो गली है जिसको जफराबाद की बाजार कहा जाता है, उसी के अंदर है हाजी जरी जनरल स्टोर। आप वहां से भी हमारा ये हाजमा कंट्रोल सिरप जो है मंगा सकते हैं। जी जनाब, बहुत प्यारी प्रोडक्ट और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट के साथ, और स्पेशली गर्मियों में जैसे कि आपको बताया है कि हाजमे के मसाइल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और आप यकीन कीजिए कि बहुत सारे लोगों खवातीन को जो छाइयां होती है ना, छाइयां जो होती हैं, वो उसका इतना, उनका इतना इलाज करवाती हैं लेकिन उनका ध्यान इस तरफ नहीं जाता, क्योंकि छाइयों की तीन बड़ी वजूहात में से एक वजह, यानी कि टोटल छाइयों की तीन वजूहात हैं, तीन रीजन हैं कि जब औरतों को छाइयां उनके चेहरे के ऊपर आती हैं, उनमें से जो है तीसरी जो वजह है, रीजन है जनाब, वो है मैदे की खराबी। ठीक है जनाब, अगर मैदे के अंदर तेजाबियत ज्यादा है, ब्लोटिंग होती है, तो आपकी छाइयां कभी खत्म नहीं होंगी। ठीक है, तो वो मेरी वो तमाम बहनें, क्योंकि ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, कोई दवाई नहीं है। ठीक है जनाब, ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है और ये जो है नेचुरल है। अगर आपको छाइयां नहीं जा रही आपकी, तो आप एक दफा एक बोतल हाजमा कंट्रोल सिरप की पी लीजिए, कुछ भी नहीं होगा। आपका मसला अगर छाइयां हैं, उनकी वजह आपके मैदे की खराबी है, तो आप यकीन कीजिए आपकी छाइयां खत्म हो जाएंगी। एक कॉलर हमारे साथ है, मौका देते हैं उनको। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम, खलील जी क्या हाल है? शब्बीर केच कॉलर मेरे शब्रास्ता
0: जी। शब्र उस्ताद की हाल है? केच दे हालात सुनो। केच ठीक है, तुसन ठीक है? वे ट्रांसमिशन सही है रेडियो पैगाम दे?
3: अगले को ले वाना भी पई है, बहुत ज्यादा क्लियर आ गई है। ऐसा इस मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम थी हैं।
0: परेशानी नहीं होनी चाहिए, परेशानी नहीं होनी चाहिए। इलाके माशाला सारी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा मशहूर है, शानी मोबाइल जोन ते हाजमा कंट्रोल सिरप हूं भी शार्ट है उत्थान, उन्ना को वांकी दस दी वे। ठीक है सही, कि हाजमा कंट्रोल सिरप अवेलेबल। ठीक है, तुस कल पहुंचो ते कार्टन चाह वो पूरा के चलन
3: दरबार ਚੱਕੀ ਜੋ ਵੰਡਾ ਪੀ ਮਜ਼ੂਰ ਆਲੀ ਤੇ ਤੇ ਰਾਤੀ ਚੱਲ ਮੈਂ ਬਦਰੀ ਦੇ ਕੁਆਟ ਸਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਾਲ ਜੇਰ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰ ਜਾ ਇਹ ਕਾਰ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਸਮਾਨ ਆਜ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ ਇਤ ਹਰ ਸੇ ਆ ਗਏ,
0: ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਰੁਕੇ ਪੈਨ ਉਹਨੇ ਕਿ ਭਈ ਸਾਰੇ ਡੂ ਚੱਕਰ ਲਗਵੇ ਸੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਤੇ ਜੇਲੇ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਮਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਰਪ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਹਾਜ਼ਮਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਬੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਚਿੰਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਵੇ ਡੂ ਚੱਕਰ ਲਗਵੇ ਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਸੋ ਕਿ ਭਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਥੀ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਕਿਸਨ ਸ਼ਾਪ ਡੇਰਾ ਇਸਮਾਇਲ ਖਾਨ।
3: ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ٹوٹی کر دیا کیونکہ ایک دو بندے کو ایسا استعمال کرا ہے بچہ اگر ان کی عمر تقریباً تیرہ سالوں کا کل ٹوٹل بارہ سالوں کا بچہ ہے ان کا وزن تقریباً چھپن کلو
0: اچھا جی صحیح ہے
3: استعمال کرو باقی جو ہے نا یہ خاص کر بلڈ پریشر شوگر اس کو بڑا کنٹرول کریں گے یہ
0: بھی ایزی حال تو سب بھول دے پے ہوئے کہ بھئی 30 روپے ایسا سستا بھی کر چھوڑے تے پہلے کوئی مزید ان کی کوالٹی بھی امپروو کر
3: بالکل تا او 3 روپے دا ڈسکاؤنٹ ہی مل گئے تے باقی ان دے نال جڑا نا یہ چسار دار دے جو 3 ہن ان سارے گرمیوں دا سیزن ہے گرمیوں نا زعفرانی سوپ استعمال کر کے ڈیوٹی سپریز لازمی ہے کیونکہ بہت شدت کی گرمی ہے لوہے ڈیڑھ کا مہینہ مزید گرمیاں وسن تو یہ سپرے یہ کر کے آنے ہیں تو ان شاء اللہ صحیح تھی ہوں گے چہرہ نرم ملائم تھی ہوں گے تو کوئی پتہ نہیں لگتا کہ گرمی پسینہ یا کچھ آ وجے تو بالکل بھی ٹھنڈک ہو آدمی جو ہے اندر بیٹھا ہو اسی کے یہ لازمی ہے سپرے کا باقی سارے سنانا تو سلام السلام علیکم و رحمۃ اللہ
0: جناب اور شبرا استاد کہہ رہے ہیں بھائی گرمی آپ کے چہرے کو جھلسا دیتی ہے بھائی یہ باتیں تو خواتین کو پتا ہونی چاہیے تھی شبرے استاد کو پتا ہے بھائی کہ بھائی کتنا ضروری ہے بیوٹی اسپرے اور گرمی میں بھائی خود کو چہرے کو بچانا ہے تو بیوٹی اسپرے استعمال کریں گے کالر ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم
4: اٹس 5 o'clock آورلی ٹائم چیک از برٹ ٹو یو بائی ریڈیو امن جن رنگ امن
5: چاہتوں کے رنگ امن کے سنگ امن ریڈیو 88.4
4: 88.4
6: ایک صاف ستھرا گھر چمکتے برتن اور تازگی سے بھرپور احساس ہر گھر کی ضرورت اور اس ضرورت کا بھروسہ ہے کمانڈر روزمرہ کی ضدی دوا ہو یا بچوں کے کھیل کود سے گندے ہوئے کپڑے کمانڈر واشنگ پاؤڈر اپنی طاقتور صفائی کے ساتھ کپڑوں کو بنائے زیادہ صاف زیادہ روشن اور خوشبودار کچن میں چکنائی اور میل کا مقابلہ اب مزید آسان کمانڈر ڈش واش برتنوں سے چکنائی کو مؤثر طریقے سے صاف کریں اور برتن کو دے شاندار چمک تاکہ آپ کا کچن ہمیشہ صاف اور خوبصورت نظر آئے اور جب بات ہو ذاتی نگہداشت کی تو کمانڈر بیوٹی سوپ دے تازگی نرمی اور دلکش خوشبو کا احساس ہر نہانے کے بعد خود کو محسوس کریں پہلے سے زیادہ تارو تازہ اور پر اعتماد معیار صفائی اور اعتماد کا نام کمانڈر کپڑوں کی بہترین صفائی کے لیے کمانڈر واشنگ پاؤڈر برتنوں کی شاندار چمک کے لیے کمانڈر ڈش واش روزانہ تازگی اور نرمی کے لیے کمانڈر بیوٹی سوپ آج ہی کمانڈر پروڈکٹس کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں اور فرق خود محسوس کریں ہر گھر کا اعتماد ہر دن کمانڈر کی بہترین صفائی تو پتہ یاد رکھیے رمضان مارکیٹ دکان نمبر 28 پروپرائیٹر عجب خان کے ساتھ اس نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں
7: 0713-2273
8: آپ کا اپنا ریڈیو 88.4 نیٹ ورک

अज तो सानू बिल्कुल 0963 511 488 अहमद अली निगार लमले जोन मैसेज कई वाइज प्रोग्राम अरों जबरदस्त प्रोग्राम दा टोलो अरवी दुनकोता सलामुना नेकी हिले अवे तेरे मात पेश कई अहमद अली निगार से यो जहान मलना अज तो सानू बिल्कुल तासो मुश्तकाल कवल है सो 0963 511 488।

0: Welcome to Radio Aman 88.4.
1: You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: एक साफ सुथरा घर, चमकते बर्तन और ताजगी से भरपूर एहसास, हर घर की जरूरत और उस जरूरत का भरोसा है कमांडर। रोजमर्रा की जिद्दी दाव हो या बच्चों के खेल कूद से गंदे हुए कपड़े, कमांडर वॉशिंग पाउडर अपनी ताकतवर सफाई के साथ कपड़ों को बनाए ज्यादा साफ, ज्यादा रोशन और खुशबूदार। किचन में चिकनाई और मैल का मुकाबला अब मजीद आसान, कमांडर डिश वॉश। बर्तनों से चिकनाई को मुअस्सर तरीके से साफ करें और बर्तन को दे शानदार चमक, ताकि आपका किचन हमेशा साफ और खूबसूरत नजर आए। और जब बात हो जाती नगदाश्त की, तो कमांडर ब्यूटी सोप दे ताजगी, नरमी और दिलकश खुशबू का एहसास। हर नहाने के बाद खुद को महसूस करें पहले से ज्यादा तरोताजा और पुरएतमाद। मियार सफाई और एतमाद का नाम कमांडर, कपड़ों की बेहतरीन सफाई के लिए कमांडर वॉशिंग पाउडर, बर्तनों की शानदार चमक के लिए कमांडर डिश वॉश, रोजाना ताजगी और नरमी के लिए कमांडर ब्यूटी सोप। आज ही कमांडर प्रोडक्ट्स को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाएं और फर्क खुद महसूस करें। हर घर का एतमाद, हर दिन कमांडर की बेहतरीन सफाई। तो पता याद रखिए, रमजान मार्केट, दुकान नंबर 28, प्रोप्राइटर अजब खान के साथ इस नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं, 0313 91 27 273।

0: रेडियो अमन नेटवर्क न्यूज एंड इंफॉर्मेशन स्टेशन। You are listening Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: एक साफ सुथरा घर, चमकते बर्तन और ताजगी से भरपूर एहसास। हर घर की जरूरत और उस जरूरत का भरोसा है कमांडर। रोजमर्रा की जिद्दी दाव हो या बच्चों के खेल कूद से गंदे हुए कपड़े, कमांडर वॉशिंग पाउडर अपनी ताकतवर सफाई के साथ कपड़ों को बनाए ज्यादा साफ, ज्यादा रोशन और खुशबूदार। किचन में चिकनाई और मैल का मुकाबला अब मजीद आसान, कमांडर डिश वॉश। बर्तनों से चिकनाई को मोअस्सर तरीके से साफ करें और बर्तन को दे शानदार चमक, ताकि आपका किचन हमेशा साफ और खूबसूरत नजर आए। और जब बात हो जाती नगदाश्त की, तो कमांडर ब्यूटी सोप दे ताजगी, नरमी और दिलकश खुशबू का एहसास। हर नहाने के बाद खुद को महसूस करें पहले से ज्यादा तरोताजा और पुरएतमाद। मियार सफाई और एतमाद का नाम कमांडर। कपड़ों की बेहतरीन सफाई के लिए कमांडर वॉशिंग पाउडर। बर्तनों की शानदार चमक के लिए कमांडर डिश वॉश। रोजाना ताजगी और नरमी के लिए कमांडर ब्यूटी सोप। आज ही कमांडर प्रोडक्ट्स को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाएं और फर्क खुद महसूस करें। हर घर का एतमाद, हर दिन कमांडर की बेहतरीन सफाई। तो पता याद रखिए, रमजान मार्केट, दुकान नंबर 28, प्रोप्राइटर अजब खान के साथ इस नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं, 0313-91-27-273।
1: Your music, your request.
3: This is Radio Station.
4: Radio Aman.

वही तो यू कसम के छिना बदलेश तो यू कसम के छिना बदलेख बेब कफर ये माशना खद बलचा भयमा तो यू कसम के छिना बदलेश जब कफर ये माशना खद बलचा भयमा अखुले द यो द पुरा द कना बोले ओकड़ों खुले द युवा द पुरा द कना बोले ओकड़ों जकसल जलशम पैदा नुस्ता भयमा खुले द युवा द पुरा द कना बोले ओकड़ों जकसल जला पैदा शम नुस्ता भयमा पहिय सड़ी बंदी मिखरस दे खुद उमर दीची कई लसम खिसरा खड़ा नु बादशाह भयमा सुमर चिस्ता कुसी तराखलम नु यकीन दियोशा शुदला से बोले शिक सरांगे सिद्रमान बिटाने से अता डाले कौन से आओ कने दा वे वैसे ठीक ठाक के लेवर को मैं माते डेले को टिक दे छी सिद्रमान भाई रेडी कने रेडी दा मत हो रेडी बवा और खा

0: ओके जी, वेलकम बैक ओ स्टूडियो मशे वंस अगेन न्यूज़ अल बेदर तहर के लिए स्टूडियो मशी आया बिल्कुल जी. लेट्स सी नेक्स्ट कलर ऑफ द शो सु गुरु सुख दी रसना दे कम जेने दे. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम
0: शफी लहान लसो से वेलकम बैक न्यूज़ अल बेदर के लिए दरते आयो
1: ماشاءاللہ
0: زبردست پروگرام روان دی.

अभी तेरे लोग मुझे अभी तेरे समझते हैं। अच्छा से देर मन से खुशहाल से अवची उसकी गली से गुजरेगा।